Good evening, Chennai. Welcome to MOP Radio. You are listening to 107.8. We are the students from Hindi Club. Namaste. मैं आपकी आरजे रितिका आपके सामने कुछ भाषण और कुछ चुटकुलों से आपका मनोरंजन करना चाहती हूँ। हर कार्यक्रम की शुरुआत

0: चलो भारत को स्वच्छ बनाएं, चलो भारत को स्वच्छ बनाएं, मेहनत करके उसका सौंदर्य बढ़ाएं, साफ करके अच्छे से सजाएं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, तो अब सुमन आपको इस विषय के बारे में एक संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत करेगी।
1: श्रोताओं का सुमन का प्यार भरा सलाम। मैं स्वच्छ भारत अभियान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी फिरगों को जलाए रखना, लहू देकर ही इसकी सफाई करेंगे, ऐसे दिल में सफाई बरसाए रखना, और ऐसे ही दिल में तिरंगा लहराए रखना, और ऐसे ही दिल में तिरंगा लहराए रखना। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई एक ऐसी मुहिम है जिससे देश के लगभग 4000 नगरों के सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियों, सड़कों आदि की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी मातृ अभियान के तहत कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। खुले में मलत्याग का उन्मूलन करना, गांवों में पक्के शौचालयों का निर्माण, अस्वच्छ कच्चे शौचालयों को जलित सुविधायुक्त स्वच्छ पक्के शौचालयों में परिवर्तित करना, नगर पालिका या नगर निगमों द्वारा कचरे के संग्रह व निपटान की ठोस व्यवस्था करना, साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, गैर सरकारी संस्थानों को भी स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पूंजी लगाने में प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों जैसे सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, सलमान खान, अनिल अंबानी आदि को स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। भारत के इतिहास में स्वच्छता को लेकर पहली बार इतनी विशाल पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय एवं महाविद्यालय भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान संबंधी जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। सरकार को भी स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि संचार के साधनों के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि इसको भी इस शुरुआत और इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दे, तो 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
0: धन्यवाद सुमन। क्या आप अपना यह कर्तव्य कर रहे हैं अपने देश के लिए? सोचिए, आज आपका भारत इतना गंदा है तो आगे भविष्य में कैसा होगा? ओ, कुछ ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। तो आपका मूड अच्छा करने के लिए छाया आपको कुछ चुटकुले प्रस्तुत करेगी, सुनिए और एंजॉय कीजिए।
2: डर है कहीं भारतीय राजनीति से प्रेरित होकर CSK और राजस्थान रॉयल्स मिलकर गठबंधन ना कर ले, नहीं नई टीम बना ले, मिले जुले किंग्स इलेवन। अगर IPL में सारी टीम बैन हो गई, फिर भी दिल्ली डेयरडेविल्स 6th पोजीशन पर आएगी। साले आ रहे हैं,
3: लेकिन हमारी थिंकिंग नहीं मिलती।
2: थिंकिंग तो हमारी भी नहीं मिलती, फिर भी 27 साल से रखे हैं। रोज 2 बाल्टी कपड़े की तकलीफ को मिटाने के लिए मैंने शादी कर ली, अब 6 बाल्टी कपड़े धोने पड़ते हैं।
4: बेचारा फंस गया है।
0: अरे, ना मुस्कुराने का जी चाहता है, ना कुछ खाने पीने का, ना सोने का जी चाहता है। ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं होती, सब छोड़कर अब शिमला चले जाने को जी चाहता है। सच में यार, चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। आज हमारे साथ 2 लड़कियां हैं जिनके विचार बड़े विचलित है। वो हमें विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलो अभी उनकी भी थोड़ी सुन लेते हैं।
5: नमस्ते, मैं लक्ष्मी विज्ञान के वरदान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी।
6: नमस्ते, मैं पार्वती विज्ञान के अभिशाप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी।
5: युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की देन से मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, मछलियों की तरह सागर में तैर सकता है, सैकड़ों मील की दूरी पर होने वाले मित्र से बातचीत करते हैं। अर्थात विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक पहलुओं में एक महत्वपूर्ण क्रांति उपस्थित कर दी है।
6: विज्ञान के युग में पला हुआ मनुष्य पूर्णतः भौतिकवादी बन चुका है। उसकी आत्मा व्याकुल है, शारीरिक आनंद के साधन उसे विलासी बना दिया है।
5: मशीनों के बढ़ने से हमारा कार्य सुविधा और जल्दी हो जाता है, मानव के वैज्ञानिक विकास में बिजली एक ऐसा सोपान है जिससे हर क्षेत्र में गति बढ़ गई है।
6: मशीनों के बढ़ने से तथा एक मशीन सैकड़ों लोगों के काम करने से बेकारी की समस्या आ गई है। मशीनों के उपयोग करने से घरेलू उद्योग नष्ट हो चुके हैं।
5: मशीनों से चलने वाला वायुयान, जलयान, रेल, मोटर कार विज्ञान की ही देन है।
6: मशीनों से आने वाली धुआं और मोटर कार से आने वाली आवाज से प्रदूषण होता है। आज के युग में प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है।
5: अगर देश में कृषि का विकास पर्याप्त मात्रा से होता है तो देश का विकास भी होगा। विज्ञान ने कृषि के उन्नति के लिए अनेक प्रकार की खादें उपलब्ध कर दी है जिन्हें फर्टिलाइजर कहा जाता है।
6: फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है और इसे उपयोग करने से मनुष्य को नई नई रोग आते हैं।
5: विज्ञान के द्वारा मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध हुए हैं। इसकी वजह हमें घर पर बैठकर दूरदर्शन में सब देख सकते हैं, अनेक जानकारी पा सकते हैं।
6: मनोरंजन के क्षेत्र में विकास हुआ है, इसी की वजह से बच्चे दूरदर्शन के सामने बैठकर उसमें मुक्त हो जाते हैं। वे बाहर खेलते नहीं हैं, सभी दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं।
5: विज्ञान की उन्नति में मानव के लिए अहित चीजों का जन्म भी हुआ है। परमाणु क्षेत्र में भारत का बड़ा विकास हुआ है।
6: आज अणु और उज्जैन बमों के परीक्षणों को देखकर विज्ञान को वरदान कहकर अभिशाप भी कहा जाता है। इन बमों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी जापान के मुख्य जगह का पूरा नष्ट हो गया।
0: धन्यवाद श्री लक्ष्मी और पार्वती। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी वरदान और अभिशाप होते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं, वरदान या अभिशाप। तो अपने विचार भी जरूर सोचेगा। आज का यह कार्यक्रम मेरे लिए तो बड़ा रोमांचक जा रहा है, उम्मीद है आपके लिए भी। मेरा भारत महान, तो चलो बढ़ाए इसकी शान, तो सुन लेते हैं उसके बारे में।
1: तो दोस्तों, मैं सुमन आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आज का भारत। देश मेरा था सोने की चिड़िया, फेंक के साड़ी उतार के चूड़िया, अब यहाँ डोले पश्चिमी गुड़िया। सोना ले गए बेदर्द फिरंगी, रोए चिड़िया देख पेड़ों की तंगी। इतिहास था जिसकी महान गाथा, आज वो समाज बना दो रंगी, तैयार खड़े लड़ने को परमाणु जंगी। कई खो गए महान नेता, देश अब जेले चाले बे